0: अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा।

प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा।

यस लोकप्रिय प्रसारण संस्था एफएम अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90

0: झूले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम और ख्याम जोटी जोटी
1: अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्व को संयोजन ले बनेको यो लैक्सेटिव ग्रैन्युल्स ले अब मेरो पेटलाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस सँग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि। मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल पेट स्वस्थ जीवन सरल। एसआर लैक्स नजिकको फार्मेसी व आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
3: सम्पर्क 98 018 30 007।

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और न भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: एक साल मर जाते हो उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया, 50 साल मर गए कहते हो 50 साल जी लिए, स्वर्ण जयंती मनाए। 50 साल मरे, मौत करीब आ रही, जीवन दूर जा रहा है, घड़ा खाली हो रहा है। जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो या जो पास आ रहा है उसके आधार पर? ये कैसा उल्टा गणित, हम रोज मर रहे हैं, मौत करीब सरकती आती। अष्टावक्र कहते हैं विषय है विश्ववत, क्योंकि उन्हें खा खा के हम सिर्फ मरते हैं, उनसे कभी जीवन तो मिलता नहीं। यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात हे प्रिय, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा आर्जव दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, जिससे अमृतत्व मिले, जिससे उसका पता चले जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा क्रोध विष है, क्षमा अमृत है, आर्जव कुटिलता विष है, सीधा सरलपन आर्जव अमृत है, दया कठोरता क्रूरता विष है, दया करुणा अमृत है, संतोष असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता, असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह फैलता चला जाता, विष को फैलाए चले जाता। संतोष जो है उससे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं, जो है वो काफी से ज्यादा है, वो है ही काफी से ज्यादा। आंख खोलो जरा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर, जीवन को जरा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी जरूरत से सदा ज्यादा है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलता ही रहा है, तुमने जो चाहा है वो सदा मिल गया है, तुमने दुख चाहा है तो दुख मिल गया है, तुमने सुख चाहा है तो सुख मिल गया है, तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया है। तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है, चाह बीज है, फिर जीवन उसकी फसल है। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है, तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुम चाहते हो सफलता, मिलती है विफलता, तुम कहते हो विफलता मिल रही, चाही तो सफलता थी, लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया, वो विफलता से भीतर डर ही गया है, विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है, और जब जब सफलता चाहेगा तब तक विफलता का ख्याल आएगा, विफलता का ख्याल भी मजबूत होता चला जाएगा। सफलता तो कभी मिलेगी, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता विफलता में ही बीतेगी, विफलता का भाव संग्रीभूत होगा, वो इतना संग्रीभूत हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा, तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया। लाओजू ने कहा है सफलता चाही विफलता मिलेगी, अगर सचमुच सफलता चाहिए हो सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है, सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है, ढांक लेना चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो, तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, दूसरे मुझे कुछ बना दे, सिंहासन पर बिठा दे, फताकाएं फहरा दे, झंडे उठा ले मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर दे, तुम भिकमंगे हो, तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा, और ये अपमान गहन होता जाएगा। लाओत्सु कहता है मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं, ये सम्मान को पा लेना है। लाओजू कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी, अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। अब ये जरा उलझा हुआ हिसाब है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा, सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही। क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफल तो हम हैं ही, अब और चाहना क्या है? सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही, अब और चाहना क्या है? परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके, अब और किसका सम्मान चाहते हो? परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया, जीवन दिया, ये सौभाग्य दिया कि आंख खोलो देखो हरे वृक्षों को, फूलों को, पक्षियों को, कान दिए सुनो संगीत को, जलप्रपात के मरमर को, बोध दिया कि बुद्ध हो सको, अब और क्या चाहते हो? सम्मानित तो तुम हो गए, परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया, तुम भिखारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो? उनसे जो तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे। ये बड़ा मजेदार मामला है, दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े भीख मांग रहे, ये भीख मिलेगी कैसे? दोनों भिखारी, तुम किससे सम्मान मांग रहे हो, किसके सामने खड़े हो? ये अपमान कर रहे हो तुम अपना, और यही अपमान गहन होता जाएगा। संतोष का अर्थ होता है देखो जो तुम्हारे पास है, देखो जरा आंख खोल के जो तुम्हें मिला ही है। ये अष्टावक्र की बड़ी बहुमूल्य कुंजी है, ये धीरे धीरे तुम्हें साफ होगी। अष्टावक्र की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है, बड़ी अनूठी, जड़ मूल से क्रांति की है। संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर, क्योंकि असत्य के साथ जो जिएगा वो असत्य होता चला जाएगा। जो असत्य को बोलेगा, असत्य को जिएगा, स्वभावतः असत्य से घिरता चला जाएगा, उसके जीवन से संबंध विच्छिन्न हो जाएंगे, जड़ें टूट जाएंगी। परमात्मा में जड़ें चाहते हो तो सत्य के द्वारा ही वे जड़ें हो सकती, प्रमाणिकता और सत्य के द्वारा ही तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो। परमात्मा से टूटना है तो असत्य का धुआं पैदा करो, असत्य के बादल अपने पास बनाओ। जितने तुम असत्य होते चले जाओगे उतने परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। तू न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है, मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को, इन सब का साक्षी चैतन्य जान। सीधी सीधी बातें, भूमिका भी नहीं। अभी दो वचन नहीं बोले अष्टावक्र ने कि ध्यान आ गया, कि समाधि की बात आ गई। जानने वाले के पास समाधि के अतिरिक्त और कुछ जताने को है भी नहीं। वो दो वचन भी बोले क्योंकि एकदम से अगर समाधि की बात होगी तो शायद तुम चौंक ही जाओगे, समझ ही ना पाओगे। मगर दो वचन और सीधी समाधि की बात आ गई। अष्टावक्र सात कदम भी नहीं चलते, बुद्ध तो सात कदम चले, आठवें कदम पे समाधि। अष्टावक्र तो पहला कदम ही समाधि का उठाते। तू न पृथ्वी है, न जल, न वायु, न आकाश, ऐसी प्रतीति में अपने को थिर कर, मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को, इन सब का साक्षी चैतन्य जान। साक्षी सूत्र है, इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं। देखने वाले बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। ये देह तो जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश, तुम इसके भीतर तो वो दिए हो जिसमें ये सब जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश, वायु प्रकाशित हो रही। तुम दृष्टा हो, इस बात को गहन करो। साक्षीणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, ये इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है। साक्षी बनो, इसी से होगा ज्ञान, इसी से होगा वैराग्य, इसी से होगी मुक्ति। प्रश्न तीन थे, उत्तर एक है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी ही सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं यह जड़मूल से क्रांति है। पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते कि अभी ही, पतंजलि कहते हैं करो अभ्यास, यम नियम साधो, प्राणायाम प्रत्याहार आसन शुद्ध करो, जन्म जन्म लगेंगे तब सिद्धि है। महावीर कहते हैं पंच महाव्रत, और तब जन्म जन्म लगेंगे तब होगी निर्जरा, तब कटेगा जाल कर्मों का। सुनो अष्टावक्र को, यदि देहम पृथकृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अधुनैव अभी यही इसी क्षण, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी कि देह मैं नहीं हूं, मैं करता और भोगता नहीं हूं, ये जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है जो सब देखता है, बचपन था कभी तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा, बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता, आया और गया मैं तो हूं, जवानी नहीं रही तो मैं जवानी तो नहीं हो सकता, आई और गई मैं तो हूं, बुढ़ापा आया जा रहा है तो मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आता है जाता है वो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं तो सदा हूं। जिस पे बचपन आया, जिस पे जवानी आई, जिस पे बुढ़ापा आया, जिस पे हजार चीजें आई और गई, मैं वही शाश्वत हूं। स्टेशनों की तरह बदलती रहती बचपन जवानी बुढ़ापा जन्म, यात्री चलता जाता। तुम स्टेशन के साथ अपने को एक तो नहीं समझ लेते, पूना की स्टेशन पर तुम ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं पूना हूं, फिर पहुंचे मनमाड़ तो ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं मनमाड़ हूं। तुम जानते हो कि पूना आई गई, मनमाड़ आया गया, तुम तो यात्री हो, तुम तो दृष्टा हो, जिसने पूना देखी पूना आई, जिसने मनमाड़ देखा मनमाड़ आया, तुम तो देखने वाले हो। तो पहली बात जो हो रहा है उसमें से देखने वाले को अलग कर लो, देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम, और करने योग्य कुछ भी नहीं है। जैसे लाओसु का सूत्र है समर्पण, वैसे अष्टावक्र का सूत्र है विश्राम, रेस्ट। करने का कुछ भी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान कैसे करें, वो प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। गलत पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूं करो, क्या करोगे, तो उनको बता देता हूं कि करो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अभी तुम्हें करने की खुजलाहट है तो उसे तो पूरा करना होगा, खुजली है तो क्या करोगे, बिना खुजाए नहीं बनता। लेकिन धीरे धीरे उनको करवा करवा के थका डालता हूं, फिर वो कहते हैं अब इससे छुटकारा दिलवाओ, अब कब तक ये करते रहे। उनको तो मैं तो पहले ही राजी था, लेकिन तुम्हें समझने में जरा देर लगी, अब विश्राम करो। ध्यान का आत्यंतिक अर्थ विश्राम है, चित्ति विश्राम में तिष्ठसि, जो विश्राम में ठहरा देता अपने चेतना को, जो होने मात्र में ठहर जाता, कुछ करने को नहीं, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो मिला ही हुआ है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो उसे कभी खोया ही नहीं, उसे खोया नहीं जा सकता, वही तुम्हारा स्वभाव है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, अनल हक, तुम सत्य हो, कहां खोजते हो, कहां भागे चले जाते हो, अपने को ही खोजने कहां भागे चले जाते हो, रुको ठहरो। परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में छिपा है। परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा करने वाले में छिपा है। परमात्मा के होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम हो ही। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं चित्ती विश्राम में, विश्राम करो, ढीले छोड़ो अपने को, ये तनाव छोड़ो, कहां जाते, कहीं जाने को नहीं, कहीं पहुंचने को नहीं, और चैतन्य में विश्राम। तो तू अभी ही इसी क्षण अधुनैव सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अनूठा है वचन, नहीं कोई और शास्त्र इसका मुकाबला करता है। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, और न तू कोई आश्रम वाला है, और न आंख आदि इंद्रियों का विषय, असंग और निराकार तू सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। अब ब्राह्मण कैसे टीका लिखे, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं। अब हिंदू इस शास्त्र को कैसे सिर पे उठाए, क्योंकि उनका तो सारा धर्म वर्ण और आश्रम पे खड़ा है, और ये तो पहले से ही अष्टावक्र जड़ काटने लगे। वो कहते हैं तू कोई ब्राह्मण नहीं है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ये सब बकवास है, ये सब ऊपर के आरोपण है, ये सब राजनीति और समाज का खेल है। तू तो सिर्फ ब्रह्म है, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, और न तू कोई आश्रम वाला है, और न तो यह है कि तू ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कि गृहस्थाश्रम में है, कि वानप्रस्थ, कि संन्यास, कोई आश्रम वाला नहीं है। तू तो इन सारी स्थानों के भीतर से गुजरने वाला दृष्टा साक्षी। अष्टावक्र की गीता हिंदू दावा नहीं कर सकते हमारी, अष्टावक्र की गीता सबकी है। अगर अष्टावक्र के समय में मुसलमान होते, हिंदू होते, ईसाई होते, तो उन्होंने कहा होता न तू हिंदू है, न तू ईसाई है, न तू मुसलमान है। अब ऐसे अष्टावक्र को कौन मंदिर बनाए, इसके लिए कौन इसके शास्त्र को सिर पे उठाए, कौन दावेदार बने, क्योंकि ये सभी का निषेध कर रहे हैं। मगर ये सत्य की सीधी घोषणा है, असंग और निराकार तू सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र ये नहीं कहता कि ऐसा तुम जानोगे तो फिर सुखी होगे, वचन को ठीक से सुनना। अष्टावक्र कहते हैं ऐसा जानकर सुखी हो। न त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। सुखी भव, अभी हो सुखी। जनक पूछते हैं कैसे सुख होगा, कैसे बंधन मुक्ति होगी, कैसे ज्ञान होगा। अष्टावक्र कहते हैं अभी हो सकता, क्षण मात्र की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे कल पर छोड़ने का कोई कारण नहीं, स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं। ये घटना भविष्य में नहीं घटती, या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती। जब घटती है तब अभी घटती है, क्योंकि अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं। भविष्य कहां है, जब आता है तब अभी की तरह आता है। तो जो भी ज्ञान को उत्पन्न हुए हैं अभी उत्पन्न हुए, कभी पर मत छोड़ना, वो मन की चालाकी है। मन कहता है इतने जल्दी कैसे हो सकता है, तैयारी तो कर ले। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं संन्यास लेना, लेंगे कभी, कभी कभी ना लोगे। कभी पर टाला तो सदा के लिए टाला, कभी आता ही नहीं, लेना हो तो अभी, अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं। अभी है जीवन, अभी है मुक्ति, अभी है अज्ञान, अभी है ज्ञान, अभी है निद्रा, अभी हो सकता जागरण, कभी क्यों। कठिन होता मन को, क्योंकि मन कहता है तैयारी तो करने दो। मन कहता है कोई भी काम तैयारी के बिना कैसे घटता। आदमी को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लेना है तो वर्षों लगते, डॉक्टरेट करनी है तो 20-25 साल लग जाते, मेहनत करते करते फिर आदमी आके डॉक्टर हो पाता। अभी कैसे हो सकते, अष्टावक्र भी जानते दुकान करनी हो तो अभी थोड़ी खुल जाएगी, इकट्ठा करना पड़े, आयोजन करना पड़े, सामान लाना पड़े, दुकान बनानी पड़े, ग्राहक खोजने पड़े, विज्ञापन भेजना पड़े, वर्षों लगते। इस जगत में कोई भी चीज अभी तो घटती नहीं, क्रम से घटती है। ठीक है, अष्टावक्र भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक घटना यहां ऐसी है जो अभी घटती है, वो परमात्मा है। वो तुम्हारी दुकान नहीं, न तुम्हारा परीक्षालय, न तुम्हारा विश्वविद्यालय। परमात्मा क्रम से नहीं घटता, परमात्मा घट ही चुका है। आंख भर खोलने की बात है, सूरज निकल ही चुका है। सूरज तुम्हारे आंख के लिए नहीं रुका है कि तुम जब आंख खोलोगे तब निकलेगा, सूरज निकल ही चुका है, प्रकाश सब तरफ भरा ही है, अहिर्निश गूंज रहा उसका नाद, ओंकार की ध्वनि सब तरफ गूंज रही है, सतत अनाहत चारों तरफ गूंज रहा है। खोलो कान, खोलो आंख। आंख खोलने में कितना समय लगता है, उतना समय भी परमात्मा को पाने में नहीं लगता। पल तो लगता पलक के झपने में, पल का अर्थ ही होता है जितना समय पलक को झपने में लगता उतना पल, मगर परमात्मा को पाने में पल भी नहीं लगता। विश्व साक्षी असंगो वसी निराकारो सुखी भव, अभी हो सुखी। उधार नहीं है अष्टावक्र का धर्म, नगद कैश। हे व्यापक, धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के, धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्ति ही है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र है, हमारे जीवन की श्वास है, हमारा होना है। धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मान सानी नते विभो। अष्टावक्र कहते हैं हे व्यापक, हे विभावान, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के, ये सब मन की ही तरंगे। बुरा किया, अच्छा किया, पाप किया, पुण्य किया, मंदिर बनाया, दान दिया, सब मन के। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा, तू तो सदा मुक्त है, तू तो सर्वदा मुक्त है। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो हमें घटानी, मुक्ति घट चुकी है हमारे होने में। मुक्ति से बना है ये अस्तित्व, इसका रोआ रोआ रंच रंच मुक्ति से निर्मित है। मुक्ति है धातु जिससे बना है सारा अस्तित्व। स्वतंत्रता स्वभाव है, ये उद्घोषणा। बस समझी कि क्रांति घट जाती है, समझने के अतिरिक्त तो कुछ करना नहीं। ये बात ख्याल में उतर जाए, तुम सुन लो इसे मन भर के बस। तो आज इतना ही कहना चाहूंगा, अष्टावक्र को समझने की चेष्टा भर करना। अष्टावक्र में करने का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि अब कोई तरकीब निकलेगी जो हम करेंगे। अष्टावक्र कुछ करने को कहते ही नहीं, तुम विश्राम से सुन लो। करने को कुछ होने वाला ही नहीं है, इसलिए तुम कॉपी वगैरह नोटबुक लेके मत आना कि लिख लेंगे, कुछ आएगा सूत्र तो नोट कर लेंगे, करके देख लेंगे। करने का यहां कुछ काम ही नहीं, इसलिए तुम भविष्य की फिक्र छोड़ के सुनना। तुम सिर्फ सुन लेना, तुम सिर्फ मेरे पास बैठ के शांत भाव से सुन लेना, विश्राम में सुन लेना। सुनते सुनते तुम मुक्त हो जा सकते हो। इसलिए महावीर ने कहा है कि श्रावक मुक्त हो सकता है सिर्फ सुनते सुनते। श्रावक का अर्थ होता है जो सुनते सुनते मुक्त हो जाए। साधु का तो अर्थ ही इतना है कि जो सुन सुन के मुक्त ना हो सका, थोड़ा कमजोर बुद्धि का है, कुछ करना पड़ा। सिर्फ कोड़े की छाया काफी न थी, घोड़ा जरा कुजा थे, कोड़ा फटकारा तब थोड़ा चला या मारा तो थोड़ा चला। छाया काफी है, तुम सुन लेना कोड़े की छाया दिखाई पड़ जाएगी। तो अष्टावक्र के साथ एक बात स्मरण रखना, कुछ करने को नहीं है, इसलिए तुम आनंद भाव से सुन सकते हो।
1: हवस् त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै। यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: सूत्र समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति
1: सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
2: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहेका छौं। त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जित्ना सफल भएका छौं।
1: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखाना में निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिम का चांदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
2: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चांदी का सबै सामान।
3: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाड़ी र जावला खेल। फोन 42 23 745 र 42 33 556।
4: सुट त चिटिक्क छ नि, यही सिलाउनु भयो कि बाहिरको?
5: काठमाडौँमा राम्रो सिलाइको लागि प्रसिद्ध श्रेष्ठ टेलरिङमा नि
6: श्रेष्ठ टेलरिङ बाग बजार र चाबहिरी।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: तुम रात से लड़ते रहो, सवेरा जरूर खिलेगा। तुम रात से लड़ते रहो, सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना, रास्ता जरूर मिलेगा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर से पुराने एवरग्रीन गानों की लिस्ट के साथ साथ बॉलीवुड के चुनिंदा आर्टिस्ट्स की अनकही और अनसुनी बातें लेकर आई हूं मैं। वो होता है ना, जब गानों के साथ यादें जुड़ जाएं तो कहानियां भी मजेदार ही निकलती हैं। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूं, उन्होंने बड़े पर्दे पर हमेशा ही अपनी नटखट और चुलबुली अदाओं से ऑडियंस को कायल किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो अदाकारा जिन्होंने अपने क्लासिकल डांस मूव्स और बेहतरीन एक्टिंग से अपना नाम बनाया है, और हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेसेस को भी इंस्पायर किया है। मैं बात कर रही हूँ वैजयंती माला जी की, हु वाज द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्ट्रेस टू बिकम अ नेशनल स्टार। इनफैक्ट वैजयंती जी ही थी जिन्होंने बॉलीवुड में सेमी क्लासिकल डांस इंट्रोड्यूस किया, और इसी कला की वजह से उन्हें अपनी पहली तमिल फिल्म मिली। पर कैसे, आखिर क्या था वो किस्सा, बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले शो की शुरुआत करते हैं उन्हीं के इस एवरग्रीन गाने के साथ, रफी साहब की आवाज में है जो, सुनिए जरा।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए

0: चले।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुना रही हूँ वैजंती माला जी के कुछ बेहतरीन गाने। गोल्डन एरा की द मोस्ट आइकॉनिक एक्ट्रेस मानी जाने वाली वैजंती जी को हमेशा से ही क्लासिकल डांस और एक्टिंग में बड़ा लगाव था, बहुत इंटरेस्ट था। और इसी वजह से उन्हें ब्रेक मिला एक्टिंग में जब वो सिर्फ 13 साल की थी। साउथ के डायरेक्टर M.V. रमन जी को अपनी फिल्म वजगाई में एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने वैजंती माला जी को चेन्नई के गोखले हॉल में भरतनाट्यम परफॉर्म करते हुए देखा और फिर क्या था, उन्हें अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट फेस मिल गया। लेकिन हल्की सी प्रॉब्लम तब आई जब वैजंती जी की दादी इस चीज से नाराज थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वैजंती जी एक्टिंग में चली गई तो उनकी एजुकेशन और डांस दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। काफी कन्विंस करने पर वो भी मान ही गई और फिर क्या था, फिल्म हो गई हिट, जिसका हिंदी रीमेक भी बना था 1951 की बाहर। धीरे धीरे साधना, मधुमति, संगम जैसी फिल्में आईं और वैजंती जी बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस ऑफ दैट टाइम। वैसे इसी डांस के कारण सेमी क्लासिकल डांस बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी हिंदी फिल्म हीरोइंस क्रेडेंशियल्स। वैजंती जी की लाइफ काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रही थी, स्पेशली जब राज कपूर जी की बात आती है। क्या किस्सा था इन दोनों के बीच, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। खुलासा इन्होंने खुद ही किया अपनी बायोग्राफी में, उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं नया दौर फिल्म से ये गाना।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज वैजयंती माला जी के कुछ गाने आपको सुना रही हूं, साथ ही उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां आपको बता रही हूं। वैजयंती जी दिलीप कुमार और राज कपूर के बहुत करीब थी। सुना है दिलीप जी शूटिंग के वक्त खुद डिसाइड करते थे कि वैजयंती जी क्या पहनेंगी, उनके आउटफिट्स का क्या कलर होगा। वैसे प्रॉब्लम तो तब हुई जब बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर जी के साथ उनके अफेयर की खबरें आईं। राज कपूर जी की वाइफ कृष्णा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट वो नहीं चाहती थी कि वैजयंती जी और राज जी एक साथ काम करें। इसी के कारण कृष्णा जी घर छोड़ करके भी चली गई थी कुछ 4 महीनों के लिए। ट्विस्ट तो तब आया जब वैजयंती जी ने अपनी बायोग्राफी में रिवील किया दैट शी नेवर हैड एन अफेयर विद राज कपूर जी। राज कपूर जी ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था मूवी संगम को, और संगम को हिट कराने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जहां सबको ये दिखाया गया था कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ है। ऋषि कपूर जी से जब इसके बारे में पूछा गया तो वो भी कहते हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसके बारे में बाद में पूरे के पूरे परिवार को बता दिया गया था। दुनिया के लिए तो वैजयंती जी का प्यार राज कपूर जी ही थे, लेकिन असलियत में राज वो थे जिन्होंने वैजयंती माला को अपने प्यार से मिलवाया था। कैसे, क्यों और कौन थे ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनते हैं लता जी की आवाज में जूल थीव से ये गाना।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: नेपाल बैंक सरल कृषि कर्जा,
2: समृद्ध बन्छ हाम्रो देश तपाईको मेहनत र हाम्रो साथले।
1: मात्र 5.89% ब्याज दरमा। विशेषताहरू,
2: न्यूनतम रु 3 लाखदेखि अधिकतम रु 20 लाखसम्मको कर्जा सुविधा।
1: परियोजना लागतको अधिकतम 80% कर्जा प्रवाह।
2: आवश्यकता अनुसार चालू पूँजी तथा आवधिक दुवै विकल्प उपलब्ध।
1: कर्जा अवधि अधिकतम 10 वर्षसम्म।
2: सरल प्रक्रिया तथा शीघ्र निर्णय।
1: शर्तहरू लागू हुनेछ।
2: कल सेन्टर 01-597-1222।
3: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।

0: पाए।
1: नेपाल टेलिकम को सहुलियत दर का प्याकेज खरीद करना #1415# डायल गर्नुहोस्।
2: नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार।

0: इंडियन क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज वैजयंती जी की जिंदगी के बारे में कुछ आपको बता रही हूं, कुछ अनसुने पहलू जो हैं वो आपके सामने लेकर के आ रही हूं। वैजयंती जी और राज कपूर साहब की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो लाजवाब थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन जैसा मैंने बताया वो काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। एक बार शूटिंग के वक्त वैजयंती जी एक लेक में गिर गई थी और उन्हें निमोनिया हो गया था। तब राज साहब ने अपने पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर वाली से उनका ट्रीटमेंट करवाया था। हेल्थ के ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्होंने वैजयंती जी के दिल का ट्रीटमेंट भी कर लिया था। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे डॉक्टर बाली और वैजयंती जी की नजदीकियां बढ़ती गईं और दोनों में प्यार हो गया। जब उनका करियर पीक पर था तब उन्होंने डॉक्टर बाली से शादी की। वैसे तो वो अपने मन से फिल्मों से दूर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर बाली ने उन्हें हमेशा अपनी हॉबीज के करीब रखा। बचपन से ही म्यूजिक और आर्ट्स में वैजयंती जी का इंटरेस्ट था, लेकिन एक नई हॉबी शादी के बाद थैंक्स टू वैजयंती जी के हस्बैंड डॉक्टर बाली एक नई हॉबी इन्होंने बनाई। क्या थी ये हॉबी बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको अगला गाना, नैन लड़ जाइए फ्रॉम द फिल्म गंगा जमुना। एक ऐसा गाना जो आज भी सभी लोग अपनी उनके लिए गाते हैं, उन्हें मनाने के लिए। सुनिए जरा।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा

0: Barcelona.
1: सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामान को लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान में 100% शुद्धता को

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं आपको बता रही थी कि वैजयंती जी के पति के कारण, डॉक्टर बाली के कारण, एक नई हॉबी थी जो कि वैजयंती जी ने अपना ली थी, और वो हॉबी थी गोल्फ खेलना। आपको पता है वैजयंती जी वॉज एन एक्सीलेंट गोल्फ प्लेयर, इनफैक्ट वो नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए भी गई थी। वैसे ये तो हॉबी हुई, लेकिन उनके काम के बारे में बात करते हुए, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि पहली बार वैजयंती जी ने ही की थी। जैसे कि संगम, जो कि इनकी फिल्म थी, वो पहली फिल्म थी जिसे यूरोप में शूट किया गया था। और तो और, इस फिल्म के लिए वैजयंती जी ने हाँ कैसे बोला उसका भी किस्सा बड़ा कमाल है। हुआ यूं कि राज कपूर जी ने कहानी सुनाई थी संगम की वैजयंती माला जी को, और बोला था कि उनका कैरेक्टर राधा का होगा। काफी समय तक उन्होंने वैजयंती जी का रिप्लाई का वेट किया, और फिर एक दिन उन्होंने वैजयंती जी को टेलीग्राम किया और उसमें पूछा, बोल राधा बोल, ये संगम होगा या नहीं। वैजयंती जी ने भी रिप्लाई किया टेलीग्राम के साथ में, जिसमें उन्होंने लिखा, होगा होगा होगा। और ऐसे ही राज कपूर और वैजयंती जी के संगम की शुरुआत हुई, और ऐसे ही राज कपूर जी गॉट द आइडिया ऑफ द सॉन्ग बोल राधा बोल। इतना ही नहीं, दूसरे गानों की भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। एक बार जय किशन जी बहुत नाराज थे हसरत जयपुरी जी से। उन्हें मनाने के लिए हसरत जी ने एक लेटर लिखा विद सेड, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना। बस फिर क्या था, ये पत्र एक गाना बन गया था फिल्म संगम में। ये गाना तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं नागिन फिल्म से अगला गाना। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। आइए आइए भाई, बैठ जाइए गीतमाला की छांव में। मगर बहनों भाइयों, आज इस छांव में आपको आराम से बैठने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ बड़ी भगदड़ मची हुई है। यानी करना बहुत है और टाइम बहुत कम है। बस तो तैयार रहिए कुछ मजेदार धूम धड़ाकों के लिए। जी हाँ बहनों भाइयों, आज हम पहुंच गए हैं गीतमाला की यादों के साल 1954 में, जब रेडियो सिलोन पर नई नई धूम मचाने वाले उस रेडियो प्रोग्राम में शुरू हुई हिट परेड। यानी लोकप्रियता का, पॉपुलैरिटी का नाप तोल गीतमाला के हफ्तावार संगीत चोरी के पायदानों पर, और साल भर के वीकली मार्क्स के टोटल्स जोड़कर साल के टॉप हिट गीतों का चुनाव। ओके, बस बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। शुरू करता हूं मैं 29 दिसंबर 1954 की रात ब्रॉडकास्ट होने वाले पहले वार्षिक गीतमाला प्रोग्राम के सबसे मकबूल, सबसे पॉपुलर हिट गीतों की दौड़ती भागती, कभी छोटी छोटी तो कभी जरा सी लंबी झलकियों की मिनी हिट परेड। 1954 यानी 1954 की सालाना पायदान नंबर 8 पर था गीत फिल्म बा

ये गीत जरा दुख भरा था बहनों भाइयों, मगर आप उदास ना होए, क्योंकि जो गीत उस पहली वार्षिक संगीत सीढ़ी के पायदान नंबर 7 पर था वो आपको फौरन मस्त बना देगा। फिल्म

अरे बहन और भाइयों, उधर मन की मतवाली बीन बजी और इधर आप मुझसे लड़ने के लिए खड़े हो गए। आप शायद यही शिकायत करना चाहते हैं ना कि मैं ऐसे जबरदस्त हिट गीतों की झलके ही क्यों बजा रहा हूँ, पूरे पूरे गीत क्यों नहीं बजा रहा। अरे तो भाई आप नाराज मत होइए प्लीज। देखिए बात यह है कि जो गीत सालाना हिट परेड्स की शानदार पायदानों पर बजे थे ना, वो तो साल भी बहुत बजते रहे और आज भी अक्सर सुनाई देते हैं यहाँ वहाँ, इसलिए उन सालाना प्रोग्रामों के गीत तो हमें झलकों के रूप में ही बजाने पड़ेंगे। मगर बहनों भाइयों, बस अभी थोड़ी सी देर में मैं 1954 के कुछ ऐसे करीब करीब पूरे गीत बजाना शुरू कर दूंगा जो बड़े जबरदस्त, बड़े मधुर, बड़े प्यारे गीत थे, मगर किसी वजह से उस साल ज्यादा न बज पाए। ऐसे गीत जो आपके दिल के किसी कोने में छिपे बैठे हैं और जब वो सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि आप जरूर दिल पर हाथ रखकर झूम उठेंगे। चलिए एक गाना अभी पेश किए देता हूं आपको खुश करने के लिए।

गीत की फिल्म का नाम तो आप शायद जानते ही होंगे, और नहीं याद हो तो इनले कार्ड या कवर पर आपको मिल जाएगा। खैर, अब स्टूडियो की घड़ी ये कह रही है कि भाई अब जल्दी करो, जल्दी करो और लौट आओ 1954 की पहली गीतमाला हिट परेड पर। तो बहनों और भाइयों, झट से चलिए उस साल की पायदान नंबर 6 पर, जिस पर आपसे मिलने, आपके बच्चों से मिलने आ रही है एक छोटी सी झलक फिल्म वचन से।

0: अच्छा भाई, रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की उस पहली वार्षिक संगीत श्रेणी पर दो सिंगिंग स्टार्स भी थे। जी हाँ, यानी स्क्रीन पर भी वही और गीतों में भी वही। नाम थे उनके सुरैया और तलत महमूद। हमारे पिछले वॉल्यूम्स में आप सुरैया से सुन चुके हैं राज कपूर और देव आनंद के बारे में। आज तलत महमूद से सुनिए कुछ मजेदार बातें सुरैया के बारे में।
1: एक दिन हम दोनों पर शादी का सीन फिल्माया जा रहा था।
2: शादी का?
1: जी हाँ। अच्छा। मालिक की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग शुरू होने वाली थी कि मैंने सुरैया से मजाक मजाक में कहा कि जरा होशियार रहिएगा, सात फेरे होने के बाद मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ।
2: अच्छा।
1: सुरैया बहुत हंसी और मजाकी में जवाब दिया कि खुदा करे ऐसा ही हो, आप बोले तो, आप तो इतना शर्माते हैं कि बात ही नहीं करना चाहते।
0: और हीरो हीरोइन तलत और सुरैया का कौन सा मशहूर गीत उस साल लोकप्रियता के पांचवें नंबर पर आया था?

अपने अपने हमराहियों के साथ गीत वाले की छाओ में फिल्म वारिस का ये गीत सुनकर मनोर भाइयों जरा याद कीजिए कि वॉल्यूम नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि शुरू शुरू में मुझे गीत माला का ये नया हिट परेड और संगीत सीढ़ी वाला तरीका जो था वो बड़ा अजीब सा लगा था और मैं बहुत घबरा रहा था कि अब हर हफ्ते 60,000 चिट्ठियां पाने वाली गीतमाला का क्या होगा और मेरा क्या होगा भाई। मेरा तो वो पहला बड़ा रेडियो प्रोग्राम था। तो उस वक्त मुझे वो कहावत याद आने लगी कि जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। मगर फिर मैंने सोचा कि भाई मुझ पर तो उस कहावत का एक और वर्जन ज्यादा फिट होता है, यानी अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो बस मैं सीना तान के आगे बढ़ गया और बहनों भाइयों ऊपर वाले की मेहरबानी से हिट परेड का वो रूप 4-5 हफ्तों में ही होने लगा हिट। लोगों को संगीत सीढ़ी पर पॉपुलर गीतों का उतरना चढ़ना एक रेस की तरह लगने लगा और कुछ लोग तो बेटिंग भी करने लगे कि देखे इस हफ्ते कौन सा गीत आता है गीत वाला की चोटी की पायदान पर। और जब साल के आखिर में वार्षिक प्रोग्राम आता ना तो यूं लगता जैसे सारी दुनिया के लोग रेडियो से कान ही नहीं बल्कि दिल लगा कर बैठे हैं और उन दुनिया वालों ने गीतमाला के पहले एनुअल प्रोग्राम के पायदान नंबर 4 पर सुना ये शानदार गीत।

0: दोस्तों, आपने अगर वो फिल्म अमर देखी थी ना, तो आपको याद होगा इस गाने में स्क्रीन पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार नजर आए थे, मगर वो मंदिर आकर असली पश्चाताप यानी पछतावा अपनी किस हरकत के लिए कर रहे थे उसके बारे में उस फिल्म के कॉमेडियन मुकरी साहब ने मुझे बताया था। सुनिए।
1: मैं शूटिंग कर रहा था और एक सीन में मुझे एक बंदर के पास जाना था।
2: बंदर के पास?
1: हाँ जी, हाँ बंदर के पास। मेरे पहले दिलीप साहब ने उस बंदर को इतना छेड़ा कि वो बहुत सीरियस हो गया। तो उसके बाद मेरी बारी और मैं उसके पास गया तो उसने बड़े जोर से उछलकर मेरे हाथ को काटा।
2: अरे, बंदर ने काटा?
1: जी हाँ। बजाय इसके कि सब लोग महबूब साहब और यूसुफ साहब मुझसे हमदर्दी करते, वो उसको एक तमाशा बनाकर लॉट पॉट हंसने लगे।
2: अच्छा अच्छा।
1: और कहने लगे कि अब तुम जो भी हरकत करोगे वो बंदर वाली होगी। और इत्तिफाकन मैं जो भी करता था वो बंदर वाली हरकत होती थी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं बंदर हो गया हूँ।
2: ओहो।
1: थोड़ी देर बाद मरहूम महबूब साहब ने मुझे हॉस्पिटल भेजा। वहाँ डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि तुमको 12 इंजेक्शन लेना पड़ेंगे।
2: 12 इंजेक्शन?
1: इंजेक्शन से वैसे ही मैं दूर भागता था, लेकिन चूंकि जिंदगी का सवाल था इसलिए मजबूर हो गया। दिलीप साहब के लिए तो ये मजाक हुआ, मगर मुझे ये मजाक बहुत ही भारी पड़ा।
0: बनो भाइयों, मुकरी साहब की मशहूर फिल्म और टीवी राइटर बेटी नसीम मुकरी ने भी बाद में कंफर्म किया है कि वो बंदर काटने वाली घटना अमर की शूटिंग के दौरान ही घटी थी। खैर, आइए साहब जरा फिर से अपनी स्पीड बढ़ाएं और यादों का कदम भी बढ़ाकर रखें। गीतमाला की पहली संगीत छड़ी यानी फर्स्ट एनुअल प्रोग्राम की पायदान नंबर 3 पर, जिस पर आ गया था फिल्म आर पार का वो गीत जो हर घमंडी मर्द हमेशा सुनना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड से।

और इसके बाद हम आ पहुंचे हैं 1954 के टॉप हिट गीत नंबर 1 पर। और उस साल की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी का गीत था, बताइए किस फिल्म का? यस, टैक्सी ड्राइवर।

अरे क्या बताऊं बहनों और भाइयों, 1954 से लेकर 1977 तक यानी 23 वर्षों तक मैं भी गीतमाला के पहले सालाना प्रोग्राम की लिस्ट को ढूंढते ढूंढते यही कह रहा था कि जाए तो जाए कहां, क्योंकि भाई उस साल की फाइलें दफ्तर से कहीं गायब हो गई थी। फिर जब मैं 1977 में गीतमाला सिल्वर जुबली के 2 LP रिकॉर्ड्स तैयार कर रहा था, तब मुझे सूझा कि क्यों ना मैं अपने सुनने वालों से पूछ लूं, शायद उनमें से किसी के पास वो लिस्ट रखी हुई हो। और बहनों और भाइयों, आपको ताज्जुब होगा जानकर के राजकोट के एक गीतमाला प्रेमी ने मुझे वो लिस्ट भेज दी। और राजकोट के उस गीतमाला दोस्त का नाम है मधुसूदन भट्ट। मगर मधुसूदन भट्ट ने 1954 के सिर्फ टॉप के 8 ही गीत लिख भेजे थे जी हाँ। और उस घटना के करीब 30 साल बाद यानी 2007 में एक और चमत्कार हुआ। ये कैसा चमत्कार था ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अभी तो शुरू हो रहा है सिलसिला उन लाजवाब गीतों का जिन्हें लोकप्रियता की धूप ज्यादा नहीं मिली और वो पीछे रह गए जरा। ये भी शायद ऊपर वाले ही का प्लान था बहनों भाइयों कि आज इतने वर्षों के बाद हम फिर खींच लाएं उन गीतों को गुमनामी के अंधेरे से और ले आए उन्हें सबके सामने गीतमाला की छांव में। तो दीजिए ये सिलसिला शुरू होता है उस साल की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म के विदाई गीत से। मगर उसमें विदाई के आंसू नहीं थे बल्कि काफी धूमधाम थी साहब।

0: शान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में अब आता है 1954 का एक और गीत जो सालाना संगीत सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाया, लेकिन जो लोग पुराने रेडियो सिलोन यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के फैन रहे हैं वो ये गीत कई वर्षों तक हर महीने की पहली तारीख पर जरूर सुना करते थे।

ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को

0: तारीख है।
1: बहनों भाइयों, आपने गीत का तो खूब मजा लिया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस गीत को स्क्रीन पर गाया किसने था? भाई, ये मालूम करने के लिए मैंने फिल्म्स और फिल्म म्यूजिक के कई जानकारों को फोन किया, जैसे नारायण मुलानी और प्रकाश जोशी और माणिक प्रेमचंद और कुशल गोपाल का, मगर बात कहीं नहीं बनी। आखिर कलकत्ते के एक मशहूर म्यूजिक लवर अनूप गडोडिया की मदद से मुझे पता चला कि पहली तारीख के गुण स्क्रीन पर गाए थे कॉमेडी स्टार मारुति ने। और साहब, मुझे अपनी लाइब्रेरी से मारुति साहब पर चलाया हुआ एक फिल्मी मुकदमा भी मिल गया, जिस पर मारुति जी पर यह इल्जाम लगाया गया था कि आप फिल्मी दुनिया ज्वाइन करने के लिए घर से भाग आए थे।
2: हाँ हाँ, भागाया और जरूर भागाया, अगर न भागता तो आज यहाँ खड़ा ना होता। अजी डी बिली मोरिया, ई बिली मोरिया, ईश्वर लाल की फिल्म देखकर हीरो बनने का शौक जागा और मैं बंबई भागा। असल में तो मैं एक एक्टर बनने आया था, मगर सबसे पहला काम मैंने मोटर मैकेनिक का किया। फिर मुझ पर स्वर्गीय दादा कोंडीबा की नजरे इनायत हुई और उनके साथ रहकर मैंने मेकअप मैन का काम सीखा। होते होते एसपी ईरानी का असिस्टेंट बनने का मौका मिला और मैं मेकअप मैन से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया।
1: और फिर मारुति साहब को छोटी छोटी रोल्स भी मिलने लगे, जैसे कि इस फिल्म में जिसका ये गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना, पहली तारीख वाला। उस फिल्म में किशोर कुमार एक्ट नहीं कर रहे थे, मगर मजे की बात ये कि 1954 ही की एक और फिल्म ऐसी थी जिसके हीरो थे किशोर कुमार, मगर गीत उन्होंने उस फिल्म में सिर्फ एक गाया, जो ज्यादा नहीं चला। और जो गाना चला वो किसने गाया था, जरा सुनिए।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार, गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। ५९५४ की छाव वाले गीतों के साथ साथ चलते चलते अब हम एक और बड़े फर्स्ट क्लास गीत के पास पहुंच गए हैं बहनों भाइयों, जो मुझे बहुत पसंद है और उसकी गायिका भी मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों ये गीत सालाना प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाया।

0: बहनों और भाइयों, आपको याद है उस फिल्म में एक बड़े अच्छे जॉन चाचा भी थे जिनका रोल मशहूर कैरेक्टर एक्टर डेविड ने किया था। मगर मजे की बात यह कि डेविड भाई ने बरसों तक अपनी माताजी को यह नहीं बताया था कि वो फिल्मों में काम करते हैं। तो एक रोज क्या हुआ ये खुद डेविड साहब की आवाज में सुनिए।
1: एक रोज मैं कुछ रात को 9 बजे घर पहुंचा। घर के सब बाकी मेहमान जो थे वो मेरी एक तस्वीर देखने गए। रात को 12 बजे जब घर के मेहमान सब वापस लौटे

0: वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, डेविड चाचा को हमने स्क्रीन पे देखा, अंकल डेविड ने ये किया, अंकल डेविड ने वो किया। तो मेरे बड़े भाई साहब को बुलाकर हमारी अम्मा ने पूछा कि 9 बजे से तो ये घर में सोया हुआ है और आप लोगों ने इसको देखा कैसे? तो इत्तफाक से मैं राज कपूर जी के यहाँ काम कर रहा था, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात हुई। तो कहा अच्छा, तो वो 16 मिलीमीटर बूट पॉलिश की जो कॉपी है मेरे पास वो ले जाइए और अम्मा को बताइए, ताकि उनको फिर पता लगे कि आप क्या करते हैं फिल्मों में। तो इस तरह जब बूट पॉलिश की कॉपी हमने घर में प्रोजेक्ट की, तब हमारी अम्मा जान को पता लगा कि मैं क्या करता हूं।
1: अच्छा भाई, वैसे तो उस साल के और भी कई कई अच्छे यादगार गीत हैं जो 1954 की उस पहली वार्षिक संगीत सीढ़ी पर नहीं बच पाए। ये इतना खचाखच भरा हुआ है कि अब सिर्फ एक और ऐसा गीत पेश कर पाऊंगा, उसी फिल्म का जिसकी एक धुन 1954 की पायदान नंबर 7 पर थी, जो आप सुनी चुके हैं। ये वही फिल्म थी जिसकी हीरोइन थी नूतन। बड़ी सीधी, शर्मीली, शरीफ, भावुक और बड़ी टैलेंटेड अदाकारा नूतन, जिनकी आवाज आज मैं आपको सुनवाता हूं अमेरिका में रिकॉर्ड किए हुए एक इंटरव्यू से, जो मेरे दोस्त सुभाष वोहरा ने दिया था। उसमें नूतन जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी अपनी भूमिकाओं, अपने रोल्स के बारे में।
2: देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है।
1: और नूतन की जिस फिल्म का दिल को छू लेने वाला गीत अब बजेगा, उसकी फिल्म का नाम था

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूतीबाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: ಸಭೆಯ ಸೂಚ್ಯ ಪಾಠ.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

तो मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है और फिर यूं हुआ।

दिल और धड़कन दूर हो गए, मजबूर हो गए कि जिंदगी आजमाती है, हंस के रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए। दिल और धड़कन मिले तो, पर अफसोस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और अब ये हाल है

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। अरे रे रे रे, इस धूम धड़ाकेदार जमाने में इधर उधर भाग दौड़ करने वालों, जरा रुक जाइए। हैं अम्मा, 1972 के लाजवाब संगीत का दूसरा भाग शुरू हो रहा है आज गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 35 में। इसीलिए तो जरा थम जाइए, जरा ठहर जाइए। देखिए मीना कुमारी की पाकीज़ा यादें भी आपसे यही तो कह रही हैं।

0: कमाल अमरोही की अमर फिल्म पाकीजा के इस छांव में छुपे हुए गीत को तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, मगर खुद मीना कुमारी ने, जो कमाल अमरोही साहब की हीरोइन ही नहीं बल्कि बीवी भी थी, उन्होंने मुझे बताया था जी हाँ कि गीत से पहले जो चार मिसरों का कता था ना, उसे मजरूह साहब ने नहीं बल्कि खुद कमाल अमरोही साहब ने लिखा था।
1: जी हाँ, इसका वो कता कमाल साहब का ही लिखा हुआ है।
0: दोस्तों, ये कथा तो आपने ठाड़े रहियों से पहले कई बार सुना होगा, पर आज जिंदगी में पहली बार इसे सुनिए एक नए रूप में, मीना कुमारी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी।
1: चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है,
2: ये मुलाकात बड़ी देर के बाद
1: आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद,
2: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है,
1: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है।
0: और इसी तरह जब बरसों बनते बनते रहने के बाद फिल्म पाकीजा मुकम्मल बन गई और उसकी रिलीज की रात आई, तो पाकीजा तो हिट हो गई साहब, मगर 31 मार्च 1972 ही की रात मीना जी ही दुनिया छोड़ गई। खैर बहनों और भाइयों, उसको तो जमाना हो गया, अब चलिए मेरे साथ 1972 की सालाना संगीत सीढ़ी के दूसरे हिस्से में। उस साल के पायदान नंबर 37 से 23 तक के गीत तो आपने पिछले वॉल्यूम नंबर 34 में सुने, और ये आई झलक गीत नंबर 22 की।
3: एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार,
4: पहले चीज का नाम बताओ,
3: देखो हम पर शक ना।

0: रहते हैं।
1: ये फिल्म थी बाबुल की गलियां और उस साल के गीत नंबर 21 ने तो भाई धूम मचा दी थी साहब। उसमें एक नई गायिका आई और सारे संगीत प्रेमी जो थे वो बोल उठे, वाह क्या आवाज है, क्या तैयारी है।

0: फिल्म गुड्डी के इस शास्त्रीय संगीत में डूबे हुए गीत को बताइए किसने गाया था? जी हाँ, नए गायिका वाणी जयराम ने। और किसके लिए गाया था? यस, उन दिनों की नई सुपर अदाकारा जया भादुरी के लिए। और गुड्डी ही थी जया की सबसे पहले शुरू होने वाली फिल्म। खैर, गुड्डी के साथ साथ और उसके बाद में भी जया जी की तो कई फिल्में आई और हिट होती ही रहीं। फिर वो जया बच्चन बन गई और आज तक हिंदी फिल्मी दुनिया में छाई हुई हैं। मगर गुड्डी जया का गीत बोले रे पपीहरा गाने वाली वाणी जयराम तो कुछ ही अरसे के बाद मुंबई के बॉलीवुड को छोड़कर मद्रास की फिल्मों में पहुंच गईं और वहां की अयो सुपर सिंगिंग स्टार बन गईं। अच्छा, वैसे गुड्डी के संगीतकार वो थे बहनों भाइयों जिनकी शोहरत कुछ कुछ ढलने लगी थी तब तक, यानी गजब के सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई। उस साल एक और बड़े ही गुणी सुरों के जन्मदाता जयदेव की एक फिल्म आई पर ज्यादा नहीं चल पाई। मगर उस फिल्म मान जाइए कि एक और बहुत ही बढ़िया गीत के बिना तो हमारी गीतमाला की छांव अधूरी रह जाएगी। कौन सा गीत?
1: ये

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। और साहब, अब मैं छाव से चुना हुआ एक ऐसा गीत पेश करता हूँ जो 1972 में तो ज्यादा नहीं चला, मगर उसके करीब 15 साल बाद से आज तक जब भी वो किसी रेडियो या टीवी स्टेशन पर बजता है ना, तो नौजवान लड़के लड़कियां खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। आप भी करेंगे जरूर। गीतमाला की छाव में के इस पैक के कवर पर इसके जन्मदाताओं के नाम जरूर देखिएगा, मगर पहले गीत सुनिए जरा।

अरे अरे, बंगले के पीछे हो रही आपकी हरकतों को देखिए देखिए, कोई देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो चलेगा। खैर साहब, वो साल 1972 भी आरडी बर्मन का साल कहा जा सकता है। उस साल आरडी बर्मन यानी पंचम की 10-11 फिल्में चली और इसके बाद लक्ष्मी प्यारे थे 9-10 फिल्मों के गीतों के साथ, और शंकर जयकिशन की 7-8 और कल्याण जी आनंद जी की 4-5 फिल्मों के गीत भी काफी चले। आरडी बर्मन की एक बड़ी हिट फिल्म कारवां के तो कई गीत चले थे साहब, मगर एक बड़ा ही स्वीट गीत जरा पीछे रह गया था छांव में। तो याद कीजिए अपनी महबूबा की मतवाली आंखें।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: कारवां चलेगा बहनों भाइयों, वो उस साल की संगीत सीढ़ी के हिट गीतों की झलकों का कारवां है, जिसमें कुछ सितारे भी साथ साथ चलेंगे। तो देखिए, पायदान नंबर 20 पर थी गुलाबी जवानियां, फिल्म जीत की।

0: और साहब अब जरा मुस्कुरा कर हो जाइए तैयार, क्योंकि गीत नंबर 19 से पहले आने वाली हैं दो गजब की यादें। पहली याद है कॉमेडी के शहजादे महमूद की, उनके बचपन के बारे में।
1: बचपन में हम बहुत मस्ती वाला छोकरा था, बहुत मस्ती करता था। मेरा वजह से बहुत छोकरा लोग को तकलीफ हुआ, नुकसान हुआ।
2: अच्छा।
1: मेरा माँ उसके वास्ते बोले को बहुत मारता था, हम मस्ती वैसा करता था।
2: ओहो।
1: मेरा आँख के अंदर गरम मसाला, काली मिर्च और लौंग का मसाला लगा के फिर बेत से मेरे को मारता।
2: अरे वाह वाह वाह,
1: आप वाह वाह करता, जो दूसरे को सुनाता वो लोग तो रोता है कि अरे अरे बेचारा कितना मार खाता।
0: महमूद ने बचपन ही नहीं जवानी में भी बहुत सारी शरारतें की, मगर जब वो एक्टर से प्रोड्यूसर बने ना, तो उन्होंने कई और एक्टरों को स्टार बनने में पहला जबरदस्त सहारा भी दिया था, जैसे अमिताभ बच्चन को। जी हाँ, अमिताभ का मिलन महमूद से हुआ महमूद के छोटे भाई अनवर अली के जरिए, जिन्होंने अमित के साथ काम किया था ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में। अनवर को अमिताभ का काम काफी अच्छा लगा था, तो उसने सोचा क्यों न सात हिंदुस्तानी का ट्रायल महमूद भाई जान को दिखाया जाए, अगर उन्हें अमिताभ का काम पसंद आया तो शायद वो किसी बड़ी फिल्म में नौजवान अमिताभ को बड़ा रोल दे दें। तो साहब महमूद बुलाए गए, सात हिंदुस्तानी का ट्रायल शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ ये आप अमिताभ बच्चन ही से सुन लीजिए ना।
2: खैर साहब, भाईजान के लिए फिल्म सात हिंदुस्तानी का ट्रायल रखवाया गया।
3: तो ट्रायल देखकर आपका काम उन्हें कैसा लगा?
2: यही सवाल मैंने डरते डरते उनसे पूछा। तो वो उछल कर कहने लगे, अरे मेरा घोड़ा जीत गया, मेरा घोड़ा जीत गया।
3: अच्छा।
2: मैं थोड़ा निराश हो गया कि मेरे काम के बारे में तो महमूद भाई कुछ कह नहीं रहे, बस अपने घोड़ी की ही फिक्र है उनको। लेकिन बाद में अन्नू ने मुझे बताया कि महमूद भाई आजकल दुनिया की हर चीज को घोड़े के रूप में देखते हैं, और जीवन का हर मोड़ उनके लिए रेस के समान है।
3: अच्छा अच्छा।
2: और वो मेरा घोड़ा जीत गया इसलिए बोल उठे थे क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आया था और वे मुझे हीरो का काम भी देने वाले थे।
0: और भाई सचमुच बॉम्बे टू गोवा में महमूद भाई का वो घोड़ा बड़ी उछल कूद के साथ जीता, और उनका एक उछलता हुआ गीत उस साल गीतमाला में नंबर 19 तक पहुंच गया।

दोस्तों अमिताभ की वो पहली धमा चौकड़ी आपने देखी थी ना, तो अब चलिए उस साल की पायदान नंबर 18 पर और सुनिए और खुद भी गाइए फिल्म लाल।

अच्छा, उन दिनों एक मशहूर फिल्म के गीत 1972 और 73 यानी दो सालों के बीच बट गए थे, इसलिए दोनों ही बरसों में वो जरा नीचे नीचे ही रहे। एक तो इसके अगले साल नंबर 28 पर बजा, जिसे आप गीतमाला की छाओं के अगले पैक में

0: वैसे उस साल रणधीर कपूर की कई फिल्में आई थीं, जैसे जीत, जवानी दीवानी और कल आज और कल, जिसके वो डायरेक्टर भी थे। लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि उन्हें रामपुर का लक्ष्मण में रेखा के ऑपोजिट काम करना है, तो आप जानते हैं रणधीर किस तरह अपने पेट नेम की तरह डब्बू बन गए थे। लीजिए उन्हीं से सुनिए।
1: जब मैं रेखा को पहली बार मिला मैं बहुत नर्वस था।
2: वो क्यों?
1: क्योंकि सब लोगों ने मुझे कह रखा था कि वो बहुत खतरनाक है और मुझ जैसे भोले भाले लड़के को बेवकूफ बनाती है और
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तुमने कैसा पाया उन्हें?
1: धीरे धीरे काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ और मैंने जाना और उसे पहचाना कि वो बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की है।
2: अच्छा
1: जी हाँ, रेखा बहुत अच्छी कलाकार है, फिल्मी दुनिया में भी और अपनी असली जिंदगी में भी।
0: और साहब, रणधीर कपूर की यादों से टकराने के बाद अब चलिए नेपाल, जहां वहीं की एक लोक धुन पर गाया जा रहा था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत पायदान नंबर 14 पर।

बहनों और भाइयों, जीवन कितना मधुर, कितना प्यारा, कितना सुखी होता है जब तक आशिक और माशूक शादी के बाद पति पत्नी बनकर एक दूजे के पूरक बनकर खुशी खुशी साथ साथ जीवन बिताते हैं। और अगर उस जोड़े में से एक चल बसता है ना, तो कितनी उदासी छा जाती है बाकी रह जाने वाले पर। इसका एहसास मुझे फिर एक बार हुआ जब इस वॉल्यूम नंबर 35 की रिकॉर्डिंग के दौरान फरवरी 2012 में मुझे मेरे एक दोस्त ने बेंगलोर से फोन करके बताया कि आपको पता है अमीन भाई, महीने भर पहले यहां बेंगलोर में महान गायक मन्ना डे की जीवन संगनी यानी हमारी सुलोचना भाभी का देहांत हो गया। मुझे धक्का सा लगा। मैंने फौरन बेंगलोर फोन किया उनके दुख में शिरकत करने। बड़े उदास थे मन्ना दा अपना 57 बरस का रिश्ता टूट जाने पर। और बहनों भाइयों, फिर मुझे याद आया 1972 ही की छांव का वो गीत जो लगता है जैसे शायद मन्ना डे ने अपनी इसी जुदाई, इसी सूनेपन का इजहार करते हुए आज दोबारा

बहनों और भाइयों, अब आगे बढ़िए मगर संगीत छेड़ी पर न जाइए, छांव ही में रहिए। यहां कुछ मूड बदलने की जरूरत है, इसलिए आइए झूम के सुने प्यार के सपनों का उसी साल का एक गीत, जिसकी धुन बनाई थी हिट संगीतकार प्यारे लाल के छोटे भाई गणेश ने, जो खुद भी बड़े गुणी थे पर कुछ कम चले।

दोस्तों, लाजवाब, मजेदार, सुमधुर, दिल को छू लेने वाले गीतों की कोई कमी नहीं थी उस साल भी। उनमें बहुत सारे तो गीतमाला में हिट हो गए और कुछ हमारी गीतमाला की छाओं के लिए बचे रहे। लीजिए एक बड़ा नाजुक सा गीत सुनिए, जिसकी फिल्म लाल पत्थर का एक और गीत आपने अभी कुछ देर पहले संगीत सीढ़ी की झलकों में भी सुना था।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत बाला की छाव में। अच्छा भाई, अब जरा जल्दी से हो जाएं 1972 की संगीत सीढ़ी की तीन झलकें। पायदान नंबर 13 पर था गीत फिल्म धड़कन का, जिसे दो हो जिया एक नहीं बल्कि दो मशहूर लोगों ने मिलकर लिखा था, एक तो प्रेम धवन और दूसरे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर

0: नंबर 12 पर था फिल्म अपराध का एक ताने मारता हुआ गीत।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।

राकेश रोशन के जीवन में। अभी तो 1972 ही में रहकर फिर चलिए उस साल की छाव में, जिसमें अब मैं ऐसा काम करूंगा जो गीतमाला की छाव में नॉर्मली नहीं करता, और वो ये कि एक ऐसा गीत पेश करूंगा जो उसके अगले साल यानी 1973 में गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी पर था जरूर, मगर बहुत ही नीचे था, यानी पायदान नंबर 35 पर। लेकिन गीत आया था 1972 में, और इतना खूबसूरत गीत था वो, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और पूरा पूरा बजने के काबिल है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ब्रिजभूषण, जी ब्रिजभूषण, याद है ना आपको नाम, जिन्होंने संगीत निर्देशन कम फिल्मों में किया मगर उनमें कई बेहद सुरीले नगीने पेश किए साहब। मगर वो फिल्में जरा छोटी यानी कम बजट वाली थीं और इसलिए ज्यादा नहीं वो चल पाईं, और उनके लाजवाब गीत भी आए गए से हो गए। वैसे रेडियो, टीवी और कमर्शियल फिल्मों में बोलने वालों में आज भी ब्रिजभूषण सुपरस्टार हैं, और ये और इनकी बीवी जाहिदा उर्फ मधुर भूषण यानी मधुबाला की छोटी बहन, ये दोनों मेरे रेडियो यूनिट के राजा रानी समान हैं। तो भाई सुनिए ब्रिजभूषण की धुन में ढला हुआ वो गीत, और याद कीजिए फिल्म का नाम।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।